0: साहब जरा इको बना देंगे।
1: मेहरबान साहिबान, हमारे आर्केस्ट्रा का

देखो रे देखो रे देखो रे देखो, कलयुग में राम जी आए हैं देखो। सुनो सुनो इनकी कथा निराली, फैमिली इनको सबसे प्यारी, वंश से नाम

यार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है, तू वक्त का बदल के रहता है, ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या आप भी वह सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं? क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलारा करते हैं? ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो?

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TMC alleges post-poll violence in West Bengal, with many party offices vandalized. India condemns Iran's attack on UAE, which injured three Indian nationals. Victoria promotes a disciplined budget despite ongoing cost of living challenges. Tragic news as three people, including two volunteers, die off the NS Doldola's coast during a rescue. The US sinks seven Iranian boats amid escalating tensions in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहाँ से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए कैरावैन show.com.au पर।
3: ब्रॉडकास्टिंग लाइव वर्ल्ड वाइड,

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TMC alleges post-poll violence in West Bengal, with many party offices vandalized. India condemns Iran's attack on UAE, which injured three Indian nationals. Victoria promotes a disciplined budget despite ongoing cost of living challenges. Tragic news as three people, including two volunteers, die off the NS Doldola's coast during a rescue. The US sinks seven Iranian boats amid escalating tensions in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहाँ से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए कैरावैन शो .com.au पर।
3: गजब के गाने जाने अनजाने, Tune India Radio पर।
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का विचार। It always seems impossible until it's done। मतलब जो नामुमकिन लगता है वो पूरा होते ही आसान लगने लगता है। सोचिए, क्या हम कोशिश बंद कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि राह कठिन है? आप सुन रहे हैं क्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: ओके जी, मैं तथा अपना नंबर दीप, तुम सुन रहे हो क्यून इंडिया रेडियो।
6: क्यून इंडिया रेडियो 24/7।

0: हेलो, मैं मोनी रॉय बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
1: मेरी राखी पहनता है ना तू, तू मेरी प्रोटेक्शन में है, तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी कभी भी।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TMC alleges post-poll violence in West Bengal, with many party offices vandalized. India condemns Iran's attack on UAE, which injured three Indian nationals. Victoria promotes a disciplined budget despite ongoing cost of living challenges. Tragic news as three people, including two volunteers, die off the NS Doldola's coast during a rescue. The US sinks seven Iranian boats amid escalating tensions in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: radiotuneindia.com.au 24/7।
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का विचार। इट इज नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। मतलब जो आप बन सकते थे, बनने में कभी देर नहीं होती। सोचिए, क्या हम समय बीतने का बहाना बना रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: हेलो ऑस्ट्रेलिया, आई एम रानी मुखर्जी एंड कीप लिसनिंग ट्यून इंडिया रेडियो।
6: 24 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप एंथम्स।

0: हाय, मैं मंजूर सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे ट्यून इंडिया रेडियो पर।
1: बहुत बारिश हो रही है।

0: पंछी। अरे पेड़ कहाँ है पहले ये तो बताओ।
1: सामने उस खेत में बोलो कौन जाता है, वो क्या है?
0: वो घोड़ा है।
1: अच्छा एक है?
0: एक नहीं

0: अच्छा बबलू तुम भी गाओ।
1: मैं
0: छा गए पापे।
1: डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा ड

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The BJP has outmaneuvered Mamata Banerjee's pro-woman appeal in recent elections. PM Modi condemned Iran's attack on a UAE port that injured three Indians. Victoria's budget reveals winners and losers, promising a safer and more affordable future. A senior Labour minister faced backlash over a broken tax promise during a live interview. In world news, the US has sunk seven Iranian boats amid escalating tensions in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: Melodies and News Blend. Tune India Radio shines.

वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार। तू मेरी बाँह फड़ ले, आंखें ये आ पढ़ ले, सीने से दिल कढ़ ले मेरे यार। किन्ना सोना लगदा।

हाय, मैं हूँ सोनू सूद और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। सुनते रहिए और मजे लेते रहिए।

चलो अब देश के मशहूर गायक श्री नरेंद्र चंचल अपनी मशहूर और सुरीली आवाज में आपका मनोरंजन करें। श्री नरेंद्र चंचल।

0: गजब के गाने जाने अनजाने ट्यून इंडिया रेडियो पर।
1: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है।

0: मैं हूँ वरुण शर्मा और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
1: न कोई नजर बुरी होती है, न कोई मुंह काला होता है, सब कुछ करने वाला तो ऊपर वाला होता है।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good morning, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. Himanta Biswa Sarma calls for Mamata Banerjee's dismissal if she doesn't resign. Tamil Nadu's TVK chief Vijay to take oath on May 7th, short of majority by 10 seats. Australia's government announces no new taxes, but schools remain the lowest funded. The Albanese government has abandoned the inland rail project connecting Nestor Dollars with Queensland. Iran's ceasefire is holding for now after recent attacks on UAE ships in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: This is the station with all your music in one place.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सूरदास का विचार। बिनु हरि भजन न उद्धरै, लाख करो उपाय। सूरदास यह जानिए, प्रेम भक्ति ही सच्चा उपाय। मतलब केवल भगवान के प्रेम और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। सोचिए, क्या हम सच्ची भक्ति के मार्ग पर हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: आई एम अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ ट्यून इंडिया एंड कीप लिसनिंग टू ट्यून इंडिया।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good morning. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. Tamil Nadu Congress offers conditional support to Vijay's TVK in the assembly elections. Trump congratulates PM Modi on BJP's historic win in Bengal, calling it decisive. The Albanese government has abandoned the Inland Rail project connecting Nowra Sthurs with Queensland. No new taxes announced, but schools remain the lowest funded in Australia. Iran's ceasefire is holding for now after recent attacks in the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक, टिकट्स लीजिए कैरावैन शो .com.au पर।
3: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। जा पर बीती आपनी सो जाने पीर पर आई। मतलब जो खुद दर्द झेलता है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। सोचिए, क्या हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं या अनदेखा करते हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
4: हेलो ऑस्ट्रेलिया, आई एम रानी मुखर्जी एंड कीप लिसनिंग ट्यून इंडिया रेडियो।